किसी ने कांटेक्ट किया बहुत टाइम पहले. आई थिंक आई वाज वेरी यंग, आई वाज 16 17. बोला था दैट बिकॉज यू आर टॉल, यू नो यू लुक गुड, आपके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप हमारा सैलून का शूट कर लें. व्हाट मोटिवेटेड मी? एक्चुअली नथिंग, इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई डिड शौकिया तौर पे, एज अ प्रोफेशन नहीं. तो हाई जीरो नॉलेज अबाउट इट, तो बस शौकिया जो है वो पहला मैंने ऐसे शूट किया था. माई फादर वॉज अगेंस्ट इट बिकॉज अगेन लोग क्या कहेंगे, तो बस उनके यही कंसर्न थी, सेफ्टी कंसर्न कि माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. नहीं, आई थिंक यहाँ पे माइनॉरिटीज की एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है. Hi, this is Erica Robin from Karachi, Pakistan, and I'm your first ever Miss Universe Pakistan. Miss Universe ka idea dimag mein kabhi nahi aaya because I knew that Pakistan list pe nahi hai. Lekin wo jo ek 1994 ya 1997 ka jo jab Sushmita Sen was crowned, to us saal ka because mujhe bahut pasand thi wo, to wo maine bahut zyada dekha tha. To become the first Miss Universe was never there. Kabhi आई थिंक ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा था, लेकिन आई थिंक इट वॉज रिटन इन द डेस्टिनी. और वो बस घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आया, आज भी अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम.

सो उसके बाद जब ये न्यूज़ आउट हुई थी तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था ट्विटर पे, हर जगह ट्रेंडिंग न्यूज़ आ गई थी. एंड द टैगलाइन वाज शेमफुल फॉर मी. वी रिजेक्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. तो बस उस चीज़ को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया था. ऑल्सो आई थिंक कमिंग फ्रॉम 1% माइनॉरिटी, तो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि लोगों को लगा ठीक है शी इज़ क्रिश्चियन सो शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द इस्लामिक कल्चर. हाउ वुड शी रिप्रेजेंट अस, हाउ वुड शी रिस्पेक्ट द कल्चर, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे स्विम वेयर राउंड भी होता है. तो ज़्यादा जो है वो बैकलैश वहाँ से आ रहा था. तो एंड आई माई सेल्फ, मैं भी इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं जो है स्टेज पे जो है वो बिकिनी पहनूं. बुरकिनी, अच्छा ये जो वर्ड है ये भी मैंने सबसे पहली दफ़ा सुना था बुरकिनी. सो इट्स एन ऑल्टरनेटिव ऑफ बिकिनी यू कैन से. I asked them that is there going to be a swimwear round, so they said yes, but it's not necessary that you have to wear bikini. If you're not comfortable, you can wear burkini, and that's the time that I said yes, I want to do it.

0: लास्ट ईयर जो थी वो 200 एप्लीकेशन थी और इस साल क्योंकि नाउ एवरीवन नोज दैट इट्स रियल इट्स ऑथेंटिक एंड पाकिस्तान से कराची लाहौर इस्लामाबाद और हर जगह से हर इंसान ने मतलब हर एज ग्रुप ने इस साल अप्लाई किया एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ठीक है नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड क्योंकि मैं दिल से बहुत चाहती थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं आई एम ग्लैड कि इस बार मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी लड़कियों ने भी अप्लाई किया सो आई वॉज रियली हैप्पी फॉर इट विद टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं नाउ इफ़ यू लुक एट एनी मिस यूनिवर्स और जो प्रीवियस मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं उनके पास टाइटल विद अ पर्पस होता है मतलब ये नहीं कि इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इफ़ यू आर ब्यूटिफुल और यू नो हाउ टू टॉक हाउ टू वॉक यू विल गेट द टाइटल And I think that being the first ever Miss Universe Pakistan has really made me feel the importance of being a true Pakistani. I'm very happy that I'm the first, but not the last. Also, I think that the opportunity that I had, it was a beautiful experience. One thing that I would cherish for the rest of my life.
1: That's all for today from Maine. We've shown you the cost of disposing of decommissioned nuclear plants, how China's growth relies on exports rather than on the domestic economy, and how India is modernizing Ayurveda. Take care.